श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ।